या कोई ना करे किम भी का यौन प्रश्न अरे के अंदा में कोई इन रंगा नो अडवार करे इन रंगा खान यौन फनून नो के अन्य टेंड वो होयले आ मागा कोई इन रंगा नो होयला इन ये मंगा टेंड करे इन दल फंगर कोई इन दो कोयो कम क्रिने चौह तो पाकोले अंदी की मम ना 7050547 मागा इन बाकार दे फसूर 7050547 maka indef ka avyangan koi 3545175 in bandef maka si 3545175 da bondi krek acha yon pokeke alwasi minten ko ya onkul qualify alaji pani ngir wanunten